जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज्र करेंगे, तुम कहना कि उज्र मत करो, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, खुदा ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी खुदा और उसका रसूल तुम्हारे अमलों को और देखेंगे, फिर तुम गायब व हाजिर के जानने वाले खुदाए वाहिद की तरफ लौटाए जाओगे और जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा।

और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं।

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء

और अगर खुदा तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है।

देखो ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि खुदा से पर्दा करें। सुन रखो, जिस वक्त ये कपड़ों में लिपट कर पड़ते हैं तब भी वो उनकी छुपी और खुली बातों को जानता है, वो तो दिलों तक की बातों से आगाह है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद करार हैदर। मेरा ताल्लुक फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। हम फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे, जिनमें हम जो 7 डिपार्टमेंट्स हैं उनका तारुफ करवाएंगे। और आज के हमारे प्रोग्राम में जिन लोगों को हमने दावत दी है, उनका ताल्लुक है डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हमारे साथ मौजूद हैं मिस मारिया हारिस, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद मंजूर साजिद। सो सामीन, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए, मैं फौरी बढ़ूंगा आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ। और मैं इब्तदा में मैम मारिया हारिस से इस्तदा करूंगा कि बताइए कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। ओवर टू मैम मारिया हारिस।
3: Thank you so much, sir, for inviting us as a guest and giving us an opportunity to discuss and introduce our department, Food Science and Technology. Assalamu alaikum, listeners. I am Maria Harris, a lecturer in the Department of Food Science and Technology at University of Central Punjab, Lahore. It is an honor to be here to introduce our department, Food Science and Technology, and highlight academic programs which we are offering in our departments, and also some exciting updates for the coming semester. Sir, basically we are offering 7 programs in our department. जिसमें आता है BS Food Science and Technology. जब 2018 में department start हुआ था तो सबसे पहले हमने यही degree introduce कराई थी, BS Food Science and Technology. फिर उसके बाद upgrade होता गया, of course, तो उसमें हमने add किया MS Food Technology में हमारा batch pass out हुआ. फिर हमने PhD Food Technology introduce करवाया. Recently last semester में हमने offer किया MS Food Safety and Quality Management. फिर लास्ट ईयर वी स्टार्टेड ऑफरिंग BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी इस फील्ड की. फिर उसके बाद अब हमें ज़रूरत महसूस हो रही है और वी आर स्टार्टिंग टू ऑफर द प्रोग्राम MS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इन कमिंग सेमेस्टर. सर, हमारा जो मेन मिशन है, दैट इज़ टू एम्पावर द स्टूडेंट्स with the necessary knowledge and skills related to food science and nutrition to empower them, or just to make sure that they are excelling in their field, particularly in academia, in research and food industries. That's all about our department.
2: Thank you very much, madam. You gave a very detailed overview of all what is happening in your department. Now we have with us Dr. Muhammad Sajid Manzoor. Now I'll be shifting to him and asking him a question that is related to the faculty members who are the members of his department. Dr. Saab, main aapse ye chahunga ki aap bataiye ki aapke department mein jo mukhtalif asatiza padhate hain unka mukhtasaran taaruf karwaiyega.
4: جی السلام علیکم. جی تھینک یو سر, تھینک یو فار انوائٹنگ اس. ڈاکٹر محمد ساجد منظور اس ٹائم آپ کے ساتھ ہیں. سو جس طرح سے مس ماریا ہارس نے ڈپارٹمنٹ کا اوور ویو آپ کو دیا, اور 2018 میں ہمارا ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہوا, اور اسٹوڈینٹس نو ڈاؤٹ طلبہ جو ہوتے ہیں وہ مین اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کسی بھی اکیڈیمیا کے, بٹ ان کو لے کے چلنے والے, ان کو زندگی میں کسی پوزیشن پہ پہنچانے والے, ان کا بیک اینڈ پہ بیک بون اساتذہ ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ. تو ہمارے پاس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہائیلی کوالیفائڈ اور ویل ٹیلنٹڈ اساتذہ ہیں, اساتذہ کی ٹیم ہے ہمارے, ہم جو ہم 14 اساتذہ پہ مشتمل ہے, جس میں سے 6 جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہولڈرس ہیں, اور 8 جو ہیں وہ ہمارے پاس ایم ایس کوالیفائڈ اساتذہ ہیں. پی ایچ ڈی ہولڈرس جو ہیں ہمارے پاس وہ مختلف انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹڈ ہیں, or they are also qualified from China, and most of us are have research experience from USA in different institutes. हमारे जो HOD हैं वो डॉक्टर कंजा अजीज़ावान हैं. उसके बाद हम पांच जो उनके साथ हैं PhD क्वालिफाइड हैं, जिनमें से एक जो है वो जिनकी डिग्री जो है वो चाइना से है. मेरा अपना रिसर्च एक्सपीरियंस सेल कल्चर एनालिसिस पे USA से वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से है. हमारे पास एक PhD होल्डर हैं डॉक्टर अख्तर सुरानी, जिनका रिसर्च एक्सपीरियंस मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से है. हमारे पास डॉक्टर अमल शोकत हैं जो सरगोधा से क्वालिफाइड हैं. डॉक्टर आयशा मुर्तज़ा जो हैं वो चाइना से PhD होल्डर्स हैं. तो इस तरह से हमारे पास बंच ऑफ फ्लावर्स है. हमारे पास ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से टीचर्स हैं जो अपनी डाइटेटिक्स और क्लिनिक्स भी चला रहे हैं और एज अ प्रोफेशनल डाइटिशियंस भी हैं. तो जिस तरह से मैडम ने आपको बताया कि हमारा जो एक डिपार्टमेंट है वो बंच ऑफ फ्लावर है. वी आर ऑल डीलिंग विद फूड एंड न्यूट्रिशन. जहाँ पे जब पे भी खुराक की बात होगी तो गजाइत के साथ न्यूट्रिशन की बात ज़रूर होगी. तो हमारा जो विजन है वो फूड एंड न्यूट्रिशन को लेके उसको उसमें एडवांसमेंट है और उसको बच्चों में इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी आर continuously finding out different skill oriented techniques, different skill oriented seminar and conferences जो हम already organize करवा रहे हैं और बच्चों को capable बना रहे हैं कि बच्चे अपने field में जाके as an entrepreneur कुछ कर सकें.
2: डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील के साथ अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया. अब मैं दोबारा पूछूंगा मैम मारिया से. मैम ये बताइएगा, एक लफ्ज आपने बोला जो है डाइटेटिक्स, इसके बारे में बताइएगा हमारे सुनने वालों को ये क्या होता है और आसान लफ्जों में बताइएगा ताकि सुनने वालों तक सही मानों में इसका माने पहुंच सके.
3: थैंक यू सर. जी सर, अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो हमारे पास दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है न्यूट्रिशन और एक होता है डाइटेटिक्स, जिससे मिलके ही हमारी डिग्री बनी हुई है BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स. सर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो आता है हमारा खाना पीना जो हम हर वक्त खा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा, हमारा लंच, हमारा डिनर, हमारे स्नैक्स, वो हमारे हैं न्यूट्रिशन. अब सर वो न्यूट्रिशन किस तरह से आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, उसने किस तरह से आपके सेल्स को मैसेजेस जाके दिए हैं, वो न्यूट्रिशन कैसे अब्सॉर्ब हुई है, कैसे उसका डाइजेशन हुआ है, हमारा स्टमक किस तरह से डाइजेशन में इन्वॉल्व रहा, फिर हमारी इंटेस्टाइन ने उसको कैसे फूड को डाइजेस्ट किया, और फिर हमारे लिवर ने उसको कैसे मेटाबोलाइज किया. ये सर जो हमारे बॉडी की कहानी है ना, जो हमारे अंदर की कहानी है, एक दफ़ा हमने खाना खा लिया उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं ना, उसको हम कलेक्टिवली डाइटेटिक्स के अंडर रखते हैं. तो दैट इज़ दी डाइटेटिक. और न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम सिर्फ खाना खा के ये भूल नहीं जाना कि वो खाना कहाँ पे गया, वो सारी आगे न्यूट्रिशन की साइंस कि उसने किस तरह से एक इंडिविजुअल को हेल्प किया ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारे सेल्स को, फिर हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उस न्यूट्रिशन ने किस तरह से हेल्प की, दैट कम्स अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ डाइटेटिक्स.
2: बहुत शुक्रिया मैम. मुझे सामीन, अब हम एक हफ्ते की तरफ बढ़ रहे हैं. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: खेत को भगा दो।
1: मुझे सामीन बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश कि आप यूसीपी 92.6 यूसीपी की दुनिया सुन रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद और मिस मारिया। अब मैं डॉक्टर साजिद की तरफ बढ़ूंगा, और डॉक्टर बताइए कि आपके डिपार्टमेंट में आजकल चूँकि एडमिशन्स की हालत बहुत पतली है, आपके डिपार्टमेंट में एडमिशन्स का क्या आलम है, और आप अपने स्टूडेंट्स को क्या स्पेशल ऑफर कर रहे हैं जो कि बच्चे आपके डिपार्टमेंट में आते चले जाते हैं?
2: जी सर, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा, जिस तरह से आपने एडमिशन्स की बात की, तो एडमिशन का सिनेरियो इस तरह से ही है, और बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और इस तरफ जब मूव कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल माशाल्लाह बड़े यू कैन से लिंक्ड हैं सोशल मीडिया के साथ, सारी चीज़ों के साथ, और बच्चों AI का दौर चल रहा है, तो वो बच्चे हर चीज़ से उससे लिंक्ड हैं, किस तरह से जो है वो अर्निंग की तरफ जा सकते हैं, तो हम इसी तरफ मूव कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। क्योंकि बेसिक चीज़ क्या है कि बच्चे कुछ भी इस तरह का स्किल आए कि बच्चे उसके तो ले के और फिर आगे जाके खुद कुछ कर सकें और उससे अर्निंग का सोर्स बन सके, तो सबसे पहले तो ये करिकुलम के अंदर हम AI रिलेटेड कोर्सेज जो हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं और वो लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं। दूसरे उसके बाद हमारे पास, जिस तरह से आप जानते हैं कि फूड स्टार्टअप, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर जो है हमारे पास हमारी एक यूनिक स्ट्रेंथ थी, और वो मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता भी है, और हम बट हमारा जो है वो ऑरिक जो है वो बड़ा स्ट्रांग है और उसको लेके चलता है, और बच्चों को फैसिलिटेट भी किया जाता है, बच्चों को इवन के उसमें हम बजट और फंडिंग भी देते हैं फूड स्टार्टअप के लिए। और उसके अलावा जो एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज आवर फूड प्रोसेसिंग हॉल, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे भी हमारे कंपेटिटर में किसी के पास भी नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास है, हमारे जो मदर इंस्टीट्यूट है NIFSET, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी UAF फैसलाबाद, उनके पास फूड प्रोसेसिंग हॉल है। तो हम फूड प्रोसेसिंग हॉल लॉन्च हमने कर दिया हुआ है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग लाइन्स हैं हमारे पास, बेकरी लाइन है जिसके अंदर सारे हम बेकरी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइन है जिसके अंदर स्क्वैश, जैम्स वगैरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास डेयरी लाइन है, उसके बाद हमारे पास कमर्शियल डिहाइड्रेटर पड़ा हुआ है, और ये हम अपने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिए हुए हैं, और बच्चे इस टाइम पे अभी भी मैं प्रोसेसिंग हॉल से होके आ रहा हूँ, तो बच्चे अपनी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और बच्चे सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा न्यू यूनिक स्ट्रेंथ है कि हम एक छोटे फूड स्टार्टअप से लेके हम एक कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग हॉल की तरफ हम मूव कर चुके हैं, जो एक कमर्शलाइजेशन हमने सेंटर बनाया है जहाँ पे बच्चे अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, यूनिवर्सिटी उन्हें फंडिंग देगी, पैकेजिंग में सपोर्ट करेगी, और उनके फंडिंग के साथ बच्चे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेल आउट होगा और यूनिवर्सिटी के बाहर भी सेल आउट होगा। उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम बच्चों को इस काबिल बना देते हैं कि बच्चे यहाँ से मूव करने के बाद अच्छी इंडस्ट्रीज़ में अप्रोच करते हैं, बच्चे हमारे बच्चे जो हैं अच्छी इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, बच्चे फूड अथॉरिटीज़ में जो चेक एंड बैलेंस अथॉरिटीज़ हैं उनमें जा चुके हैं, बच्चे डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मूव कर चुके हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने हम हायर एजुकेशन कमीशन जो है उनका एक क्राइटेरिया है, वो जब भी किसी इंस्टीट्यूट को क्रेडिटेशन देते हैं तो वो ये चीज़ चेक करते हैं कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई सोसाइटी या क्लब है जहाँ पे बच्चों को इस काबिल बनाया जा रहा है कि टीम वर्क बच्चों को सीख सकें, बच्चे लीडरशिप सीख सकें, बच्चे दे कैन आल्सो इन्वॉल्व इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। नो डाउट एक एकेडेमिया जो होता है उसने बच्चों को डिग्रीज तो देनी ही देनी है, बट उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चों को पॉलिश करती हैं। हमने अपने डिपार्टमेंट में फूड जंक्शन सोसाइटी जो है वो लॉन्च की हुई है, और ये सोसाइटी जो है ये अपनी मुनफरिद एक क्लब है जो पूरी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के और फैकल्टी के फंक्शंस जो है वो अरेंज करवाता है, डिफरेंट सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करवाता है, और बच्चे इसके अंदर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह और लर्निंग सीखते हैं।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब मैं मिस मारे की तरफ दोबारा बढ़ूंगा। मैम, मुझे आप ये बताइएगा, एक बड़ा मशहूर कॉल है कि शोहर को मती बनाने के लिए, उसको ताबे बनाने के लिए उसके पेट के रास्ते उस तक पहुंचा जाता है। मुझे आप ऐसी टेक्निक बताइए कि आपकी जो डिपार्टमेंट है ये एक हमारा ज़रिया बने हमारे तमाम पाकिस्तानियों के शिकम तक पहुँचने का, ताकि आपके प्रोडक्ट्स में बाकी तमाम प्रोडक्ट्स को मात दे सकें।
3: जी सर, अभी रिसेंटली हमारा फूड इनोवेटिव कंपटीशन हुआ FIC, जो कि एक बड़े पैमाने पे होता है, हमारा बड़ा ग्रैंड इवेंट होता है जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक और इवन हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। सर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इनोवेशन और कंपटीशन की वजह से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास लेके आते हैं और हमें यकीन मानिए समटाइम ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमने खुद भी कभी नहीं देखे होते, बच्चे इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास लेके आते हैं। और हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज सेलेक्ट कर चुकी है फॉर कमर्शलाइजेशन फूड। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो जैसे सर ने भी बताया, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग हॉल है जिसमें स्टूडेंट्स के पास हर वो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के पास एक्सेस है, वो उनको इस्तेमाल करते हैं और जिस हद तक जाके वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेके आना चाहते हैं वो लेके आते हैं। और हमारे वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर इंडस्ट्रीज़ में भी सेलेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स जाते हैं, उनकी कमर्शलाइजेशन होती है, बच्चे अपनी रेसिपीज़ शेयर करते हैं। तो हमारा FIC होता है वो बड़े ग्रैंड पैमाने पे होता है, उसमें हमारे इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं जो एज अ जज फूड को सेलेक्ट करते हैं। सर रिसेंटली मुझे याद है कि हमारा FIC हुआ लास्ट मंथ, तो ऑरिक ने एक प्रोडक्ट चूज़ की और उनको 20,000 बच्चों को कैश मिला ऑन द स्पॉट। और इसी तरह फिर सेकंड विनर्स को भी 10,000 कैश दिया गया, फिर इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी उनको कैश दिए जाते हैं। अब हमने ये किया है कि जो बच्चे अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें इनोवेशंस लेके आते हैं, बहुत यूनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेलेक्ट किया जाए और उसको कमर्शलाइजेशन के लिए रेडी किया जाए। और अभी जैसे सर ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग हॉल में बच्चे उसी पे काम कर रहे हैं, तो हमारी तो हर तरह से ये कोशिश है कि बच्चों को जिस हद तक उनको एम्पावर किया जाए कि वो अपनी इनोवेशंस को इस्तेमाल करते हुए, क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए नई से नई प्रोडक्ट्स बनाएं। और ये जो फूड इनसिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान से, इसको इरेडिकेट किया जाए और उसके साथ साथ इस तरह की प्रोडक्ट्स जो कि हेल्दी हों ताकि हम मैल न्यूट्रिशन का भी साथ में खात्मा कर सकें।
1: हम फिर दोबारा एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: मोहतरम सुनने वालों, हम फिर आपको खुशामदीद कहते हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। अब मैं आखिरी जो मेरा हमारा जो हिस्सा है इस प्रोग्राम का, उसमें मैं चाहूँगा कि अपने मुअज्जिज़ मेहमानान से ये पूछूँ कि आप जो चीज़ें बनाते हैं, क्या इनकी आपने पैकेजिंग का भी कभी सुना? कहते ना, सीइंग इज बिलीविंग। अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो बड़ी दिलफरेब होनी चाहिए, दीदाजेब होनी चाहिए, नज़र को भली लगनी चाहिए, उसके लिए आपने क्या सोचा? पहले मैं डॉक्टर साजिद से ये सवाल पूछूँगा।
4: जी सर, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको बताया और डिग्री का इंट्रोडक्शन दिया, तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एक कम्प्रीहेंसिव डिग्री है। इसके अंदर सारे के सारे मॉड्यूल्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके उसके एनालिसिस से लेके फूड पैकेजिंग तक। तो फूड पैकेजिंग इज अ फुल कोर्स दैट इज टॉट इन वन सेमेस्टर। तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाया जाता है इसी परफॉर्मेंस के अंदर, कि बच्चे प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग भी डेवलप करते हैं। बच्चे पैकेजिंग खुद डेवलप कर रहे हैं अपनी, उसके ऊपर लेबलिंग कर रहे हैं। तो फूड लॉज एंड रेगुलेशन इज ऑल्सो अ कोर्स, जिसके अंदर हम सारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज का बताया जाता है, उसके अंदर फूड लेबलिंग का बताया जाता है। बच्चे उसको देखते हुए और इंटरनेशनल लेबलिंग और नेशनल लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए खुद लेबलिंग करते हैं। उसके अलावा हमारा ऑरिक, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑरिक इज ऑल्सो सपोर्टिंग आवर किड्स, आवर स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग पैकेजिंग और इन बाइंग पैकेजिंग। तो वो सारा हमारा उसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं।
3: मैं मारिया से पूछना चाहूँगा, मैं मुझे ये बताइएगा कि आप जानते हैं इस मार्केट में इतनी कैलेसनेस है कि ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव, तो आप के प्रोडक्ट में कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि कम्पीट भी कर सकें ऑलरेडी मौजूद प्रोडक्ट्स को और उनको नीचा भी दिखा सकें? कुछ ऐसे मुझे चीज़ें बताइएगा।
5: जी सर, जब हम फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम हमेशा बच्चों को गाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स इस तरह के होने चाहिए कि वो बजट फ्रेंडली हों और एक आम इंसान तक पहुंच सके। जैसे सर, बहुत से न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन बच्चों में लैक कर रहा होता है, विटामिन डी, कैल्शियम, बच्चों को ड्यूरिंग लेक्चर ये चीज़ें हम बताते हैं कि आपने इन चीज़ों की, इन न्यूट्रिएंट्स की फोर्टिफिकेशन करनी है या इनरिचमेंट करके आपने अपनी प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करना है, और इस प्रोडक्ट इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक आम इंसान तक पहुँच सके। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो मेन मिशन ही यही है कि हमने फूड इनसिक्योरिटी का खात्मा करना है, ताकि हर आम पाकिस्तानी के पास हमारा जो फूड है वो पहुंच सके। सर, जब भी हम न्यूट्रिशन लेबल पढ़ते हैं अक्सर फूड प्रोडक्ट्स का, तो उसमें एरर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन क्लासरूम। तो बच्चों को फिर बताया जाता है कि आपने कुछ भी न्यूट्रिएंट जो फूड के अंदर ऐड किया है उसको एक्यूरेटली लिखना है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कितनी कैलोरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, पर सर्विंग उसकी कैलोरीज कितनी है, और जो सूटेबल और परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो भी आपने वाजे तौर पे लिखना है। बच्चों को इसके साथ साथ गाइड भी किया जाता है कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई एलर्जन मौजूद है तो आपने उसको हाईलाइट करना है, अगर आपका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप वालों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है तो आपने उसको भी हाईलाइट और क्लियर कट लिखना है कि दिस इज नॉट फॉर दैट फूड ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल दैट्स नॉट फॉर प्रेगनेंट और लैक्टेटिंग मदर्स। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को क्लियर गाइडेंस दी जाती है। सर, जो हमारा FIC हुआ उस पर हमने का बच्चों को प्रॉपर हमने असेस किया कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं आ रही, तो हमने देखा हमारे प्रोडक्ट्स, बच्चों ने प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे बनाए हुए थे, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स थे ऑन FIC, और उसके साथ साथ पैकेजिंग भी बच्चों की कमाल की थी। सर, अगर हम न्यूट्रिशन लेबल्स को देखें, तो एज अ डाइटिशियन मैंने उन प्रोडक्ट्स को देखा, लेबल्स को देखा कि किस कहीं कोई एरर तो नहीं, बच्चों ने न्यूट्रिशन फैक्ट और उसके साथ साथ जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो भी एक्यूरेट लिखी हुई थी। तो हमारा ज़्यादातर जो फोकस है वो इसी चीज़ पे होता है कि बच्चे एक्यूरेट कंटेंट्स लिखे और खुद भी आगाही हो उनको, उनको पता हो कि हमारी डिमांड क्या है और हमने उसको किस तरह से मीट करना है।
3: बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इतना अच्छा बताया। कम से कम ये मुझे आपका पहलू बहुत अच्छा लगा आपके डिपार्टमेंट का, कि एग्जैक्ट वैल्यूज लिखी होती हैं लेबल के ऊपर, अक्सर लोगों की मिसलीडिंग होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यही आपका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा मेरे नज़दीक। आखिर में मैं मैम से पूछना चाहूँगा, मिस मारिया से, कि यहाँ जो बच्चे आएंगे मैम, उनको यहाँ ऐसी क्या चीज़ स्पेशल मिलेगी जो कि बाकी यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगी?
5: थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन। there are multiple reasons for choosing UCP for FST and HND. कुछ मैं उसमें से reasons highlight करूँगी and I would love to highlight that के सर हमारे time पर जब मैं graduated हुई थी तो हमने theoretical work हमारा बहुत ज़्यादा था लेकिन जो practical exposure था वो हमें बहुत कम दिया जाता था लेकिन अब जो है हमने चीज़ें काफ़ी हद तक modify कर दी हैं चीज़ें काफ़ी हद तक upgrade हुई हैं जैसे सर हमारी अभी हमने एक list बनाई है events की जो कि for coming students के लिए हमने plan किया कि जब students हमारे next semester start होगा तो उस में हम न्यूट्रिशन सिंपोजियम एंड गेस्ट लेक्चर्स रखेंगे पहले भी होता आया है मजीद हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं ताकि इंडस्ट्री में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आएं और इमर्जिंग ट्रेंड्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन और फूड साइंस बच्चों के साथ डिस्कस करें मीनवाइल सर हम प्लान करें कि हम न्यूट्रिशनल केस स्टडी चैलेंज के नाम से एक इवेंट रखें जिस तरह से हमारा FIC होता है जिसमें प्रोडक्ट बच्चे डेवलप करते हैं इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं वो रियल टाइम जो केस स्टडीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस कराएं और उन पे डाइटरी इनोवेशंस करके डाइट थेरेपी को भी इंट्रोड्यूस करवाएं कि किस तरह से वो मेडिकल प्रॉब्लम की न्यूट्रिशनल थेरेपी करेंगे सर हमारे मल्टीपल प्लान्स हैं हम चाहते हैं कि हमारे आप जो स्टूडेंट्स आएँ हम उनका इंटर यूनिवर्सिटी न्यूट्रिशन क्विज कॉम्पिटिशन हो ताकि बच्चों को ज़्यादा से मेन हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें बच्चे को पता हो कि अगर वो क्लास के अंदर न्यूट्रिशन असेसमेंट के नाम से कोई कोर्स पढ़ रहा है तो वो रियल टाइम हॉस्पिटल्स में जाके वार्ड्स में जाके पेशेंट की असेसमेंट किस तरह से करनी है तो सर ये हमने अपने एकेडेमिया और करिकुलम के अंदर ये कंपलसरी कर दिया है कि बच्चे थ्योरेटिकल वर्क के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज़रूर लेंगे
3: मैम बहुत शुक्रिया आपने भी प्रैक्टिकल वर्क का जिक्र किया साइंस तो विदाउट लैब मुकम्मल नहीं होती आखिर मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा डॉक्टर साजिद से कि बताइए कि आपकी लैब्स में क्या ऐसी चीज़ है जो इन लैब्स को दूसरी यूनिवर्सिटियों की लैब से मुमताज़ करती है
4: जी सर थैंक यू इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रा जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन था मिस मारिया आरिस से कि प्रोडक्ट्स हमारे क्यों डिफरेंट होंगे और किस तरह से वो हमारे मार्केट को कैच करेंगे उसमें जस्ट मैं आपको जस्ट इसी से एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं जो

0: स्टडी बताया कि हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब्ड हैं और जिसमें हम बच्चों ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को उन पर इतनी हो कि बच्चे जब फील्ड में जाएं तो दे कैन ईजिली ज्वाइन एनी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, दे कैन ईजिली ज्वाइन रिसर्च डिपार्टमेंट, दे कैन ईजिली ज्वाइन एनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, दे कैन ईजिली ज्वाइन एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन अथॉरिटीज़। तो हमारे पास जिस तरह से अभी प्रैक्टिकल वर्क की बात हो रही है, तो हमारी फूड टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन की डिग्रीज दोनों इस तरह से हम बच्चों को वेल इक्विप करते हैं कि बच्चों को दोनों डिग्रीज के अंदर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आए। न्यूट्रिशन में अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन क्लिनिक हम लॉन्च कर चुके हैं जिसके अंदर जो हमारे पास फैकल्टी हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनके अपने क्लिनिक्स हैं, तो यहाँ पे बच्चों को एज एन इंटर्न्स वो बच्चों को सिखाते हैं। दूसरी तरफ हम आएँ तो फूड डिपार्टमेंट में हम फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसके एनालिसिस की तरफ बच्चों को हम लेके जाते हैं।
1: डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील से बताया। मौजूद सामईन, प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद मंजूर और मिस मारिया हारिस का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आके अपने डिपार्टमेंट को बड़े अहसन तरीके से तारुफ करवाया और प्रोग्राम को भी बड़े खूब तरीके से बयान किया। जब तक हम अगले प्रोग्राम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मेरी तरफ से यानी आपके आज के मेज़बान डॉक्टर सैयद करार हैदर की तरफ से आपकी आमद का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी,
2: थैंक यू।
1: और इसी के साथ आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और देखिएगा किस तरीके से न्यूट्रिशन और डाइट टेक्टिक्स के बारे में उन्होंने हमें बताया। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magical Blood City.
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन ग़िज़ा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: 50166 on what?
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: 93.6 बोरियत को भगा दो। एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अली असरम खिदमत में हाजिर हूँ और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आज प्रोग्राम उम्मीद नो के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट अनम इलियास। अस्सलाम वालेकुम अनम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
2: कैसी हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अनम, आज एक नहायत अहम मौजू के साथ मैं आपकी पेशे खिदमत हूँ और मैं समझता हूँ कि ये हमारी यूथ के लिए एक नहायत अहम टॉपिक है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जब हमारे नौजवान प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं या कुछ सोचते हैं करने के लिए तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ती है, टाल मटोल आ जाता है कि मीन्स टू से अगर वो किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए एक रास्ते को चूज़ करते हैं कि इस रास्ते पे मैंने चलना है, तो उस रास्ते पे चलने के लिए मुख्तलिफ ऐसे वजूहात पैदा हो जाती हैं। काफ़ी दफ़ा उनको वो स्ट्रगल छोड़ना पड़ जाती है, कभी वो स्ट्रगल को ले कर चल पड़ते हैं। तो क्यों, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या वजूहात हैं कि हमारी यूथ, हमारे नौजवान क्यों टाल मटोल का सामना करते हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करते हैं?
3: जी अली, जो प्रोस्टिकेशन आपने मेंशन की है अभी ना, इसकी मेन वजह तो ये आती है कि जो पाकिस्तान की यूथ है ना, वो ऐसे डीमोटिवेट, तो एक दूर की बात होती है, उनके लाइफ के कोई गोल्स ही नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एडमायर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज से। उनके आज पास कोई बैठा हुआ है, वो अपनी स्टोरी सुनाएगा, दे विल एडमायर हिम। कल कोई और दूसरा बैठा होगा, ये उससे ज़्यादा अच्छा है, वो उसको एडमायर करने लग देंगे। तो उनका एक स्पेसिफिक ना, एक कह लें कि उन्होंने अपने माइंडसेट के लिहाज से नहीं देखा कि हमारे लिए क्या बेहतर है ना, हमने क्या आइडलाइज किया हुआ है, हमारा फ्यूचर गोल क्या है, हमें फ्यूचर, ये तो किसी और का फ्यूचर है ना। सक्सेस स्टोरी सुने आप, बट वो उसको ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जैसे किसी को फ्रीलांसिंग में बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत सक्सेस मिल गई, ठीक है, लोगों ने उसको ऐसे अडॉप्ट कर लिया। फ्रीलांसिंग में भी बहुत अनसक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करते। आप जिससे पूछे, फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है, बहुत आप नाम कमा रहे हैं, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी बेसिक्स में कोई नहीं गया कि भाई आपके लिए फ्रीलांसिंग मैटर भी करती है कि नहीं, आपको करनी भी चाहिए या नहीं, कि आपको, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकोगे कि नहीं। उन्होंने बस देखा वो सक्सेसफुल है तो मैं भी हो जाऊंगा।
2: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल है ना, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं जो ऐसे होते हैं। और मैंने कई दफ़ा ये देखा है कि लोग 3 to 4 डोमेन्स में अपनी लाइफ को लेकर चल रहे होते हैं। अगर बाय प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल वो लॉयर हैं या बाय प्रोफेशन वो मीडिया पर्सन हैं, तो वो 3 से 4 और डोमेन्स की, जिन जो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, बरक्स होंगी एक दूसरे से, सो उसको लेके चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में या उनकी सिटिंग में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मीडिया पर्सन हूं, तो अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा मौजूद है जो कि एक अच्छा फ्रीलांसर है, तो मैं साथ ही साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरा एक और दोस्त है वो लॉ से अच्छी अर्निंग कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि साथ LLB की डिग्री स्टार्ट कर दूंगा। तो हम बहुत जल्द, मैं समझता हूं, इंस्पायर हो जाते हैं दूसरों से और मुख्तलिफ डोमेन्स में चलने लग जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या हमें अपनी एक डोमेन को पकड़ के उसमें मेहनत करके एक अच्छी अचीवमेंट और एक अच्छा स्टेज अचीव कर सकते हैं हम?
3: जी ऐसे ही, क्योंकि अगर आप पेशेंस से काम करोगे, ठीक है, उसमें आप अगर दो क्वालिटीज लेके आते हो, कॉन्टीन्यूटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो उसमें आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आइदर कोई भी फील्ड है, इवन CSS की अगर आप अटेम्प्ट देना चाहें, तो कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम तो है नहीं है लाइफ में ना। इम्पॉसिबल जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, मेरा ये बिलीव। एंड आई एडमायर के भाई लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ भी नहीं होता, बट ये है कि आप जब एक चीज़ पर फोकस ही नहीं आप अपना 100% रखोगे, तो आप अचीव कैसे करेंगे? आप उस पर 20% फोकस कर रहे हैं जो चीज़ मैटर कर रही है, और 80% आप और ग्रैब कर रहे हैं कि मैं किस चीज़ पर और फोकस करूँ। ملٹیپل انکمز کی لائک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لائف میں کہ وہ ایک آپ کا سیفر زون ہوتا ہے, بٹ دیٹ واز ناٹ یور انیشیل اسٹیپ کہ آپ اسٹارٹنگ میں اپنے آپ کو نا چار پانچ فیلڈس میں ایسے انگیج کر لیں کہ آپ ایک کو بھی پراپر ٹائم نہیں دیں.
2: جی بالکل انم, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انم سے ہم اس چیز کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیسے پروکریسٹینیشن سے بچ کے ایک مضبوط خواب کو ہم بنا سکتے ہیں اور کیسے ایک ڈریم کو سیٹ کر کے ہم لائف میں چل سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, سنتے رہیے FM 92.6 UCT کی دنیا.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीदें नो और मेरे साथ मौजूद हैं अनम इलियास जिनका ताल्लुक है लॉ से और हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोक्रेस्टिनेशन पे टाल मटोल पे कि कैसे हम अपने ख्वाब को अचीव करते हुए एक सफ़र से गुजर रहे होते हैं और टाल मटोल हमें कमज़ोर कर देती है, हमारे ड्रीम को हमसे दूर कर देती है और ये सफ़र ख़त्म हो जाता है या नाकामियों की तरफ चला जाता है। तो अनम आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं, कौन से ऐसी वजूहत हैं और कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी यूथ के लिए एक ऐसा पैगाम छोड़ सकते हैं कि अगर वो उनको फॉलो करें तो प्रोक्रेस्टिनेशन और टाल मटोल से वो बच सकें।
2: इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप फोकस्ड रहो, ठीक है, क्योंकि जब आप टाल मटोल करते हो, आप एक कोई आपका कोई भी एक्टिविटी आप उसको कल पे शिफ्ट करते हो, जब कल भी आपने करना ही है तो अगर आज कर लोगे तो दैट विल बी बेटर कि भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि आप उसके ऊपर एक ग्रिप रख लेते हो कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो अगर इसमें कोई ऊपर नीचे चीज़ होती है तो मैं मैनेज कर लूँगा समय। लेकिन आप जब लास्ट मोमेंट पे करते हो ना तब फिर आप यहाँ तो चलते ही हो या डूबते हो, ठीक है, एक ही सिनेरियो होता है, वो मिड वाला कोई रास्ता नहीं निकलता कि कोई हल निकल जाएगा इसका। और सेकेंडली ये आता है कि अगर आप अपनी जो रूटीन है ना वो थोड़ी बहुत सम हाउ कैजुअल करो, ठीक है, उसमें टाइम टेबल रखो, लाइक नॉट प्रॉपरली फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप 5 बजे तो उठ जो 6 बज गए ये चीज़, लेकिन एक डेली चार्ट बनाओ इन केस के मुझे किसी ने बहुत अच्छी एक एडवाइस की थी कि भाई आप रोज़ाना सुबह मोबाइल देखने के बजाय होते हैं ना इंस्टाग्राम व्हाट्सअप के अपडेट्स देखने के बजाय आप अपने नोट्स रखो, आपको सुबह एक ना अलार्म मिलता है कि भाई आपने आज ये एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, और सम हाउ आप उनमें से चलो अगर 5 एक्टिविटीज़ है आप 5 नहीं 3 भी अगर मैनेज करते हो तो सम हाउ आप गोल के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हो। बट उससे बेहतर हो कि आप उसको ऐसे निगलेक्ट कर दो, यार आज का दिन तो गुजर गया कल देखेंगे अब इसको, तो आपने कुछ ना कुछ तो किया होता है, क्योंकि जो बेबी स्टेप्स होते हैं ना वो सक्सेस में बहुत मैटर करते हैं रेदर देन रिजल्ट।
1: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बेबी स्टेप्स और एक छोटे स्टेप्स ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। आप कभी भी किसी चीज़ को अचानक से अचीव नहीं कर पाते और हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी अचानक नहीं आ जाता, उसके लिए स्ट्रगल, मेहनत और छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको उस कामयाबी तक ले जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या इन छोटे स्टेप्स को ले कर हम अपने गोल्स या जो हमारे एक ड्रीम हमने सेट किए हुए क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं?
2: जी, मेरा मानना ऐसा ही है कि आप अचीव कर सकते हो, ठीक है, अगर आप फुली मोटिवेटेड और फोकस्ड रह के आप अगर बेबी स्टेप्स भी ले रहे हो ना तो आप अपना इजीली गोल ना अचीव कर लेंगे। एंड सक्सेस रेट 50-60% ही होता है, ठीक है, 100% तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये चीज़ होती है कि जब आप एक तो टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो ना तो रेदर देन आप अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दे सकते हो। बहुत सारे लोग आजकल की जनरेशन में आप ऐसे देखेंगे वो सक्सेसफुल तो बहुत हैं बट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स को छोड़ते, बट उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स को छोड़ते, ये तो जब आपको टाइम मैनेज करना आ जाते ना तो आप दोनों चीज़ें मैनेज करके चलते।
1: बिल्कुल ऐसे ही अनम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हमारे सामीन के लिए कोई आप पैगाम देना चाहें ज़रूरी इस प्रोग्राम से कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बच के वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के सफ़र को मुकम्मल कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं?
2: यही 2-3 मेरी गाइडलाइन थी उनके लिए कि एक तो वो फोकस रहें, अपना कोई गोल सेट करें, ठीक है, विदाउट गोल या विदाउट ड्रीम तो कुछ आप अचीव नहीं कर सकोगे, जब होगा ही नहीं तो आप ब्लैंक हो गए, तो ब्लैंक इंसान क्या ही अचीव करेगा, ना उसको चाहत होगी किसी चीज़ की कि मुझे कोई चीज़ मिले लाइफ में, या मैं ये चाहता हूँ मैं कल को ये हूँ, मुझे लोग इस नाम से जाने। तो दूसरा ये है कि अगर आप उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो वो एक बेहतर होता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हो, ठीक है, आप थोड़े बहुत डीमोटिवेट होते हो, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत होता है ना कि फेलियर देखना भी पड़ता है, इन अ रो आप सक्सेस ही तो नहीं देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि सब देखें सक्सेस, बट सम हाउ अगर लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आते हैं जो कि नॉर्मल है तो आप उनको फेस करने की ना आपके पास स्ट्रेंथ रहती है, आप मोटिवेट रहते हो थोड़ा बहुत कि कोई बात नहीं, ये काम गलत हो गया वो ठीक भी तो हुआ था ना, तो ये होप जो है ना आपको ले चलती है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब भी कामयाबी के सफ़र में आप चल रहे हों तो मुश्किलात तो आपका बाय प्रोडक्ट है, आपने वो फेस करनी ही करनी है, साथ ही साथ आप में इतना सब्र होना चाहिए कि अगर किसी स्टेप पे आप कोई फेलियर फेस करते हैं तो उस फेलियर को आपने सक्सेस के लिए एक पुश समझ के चलना है कि ये मेरे लिए शायद कामयाबी के सफ़र के लिए एक गुड पॉइंट है कि शायद मैं इसको अडॉप्ट करके चलूँ तो मैं ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी सामेईन से इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने प्रोग्राम जुगनू के साथ हाजिर है मोहम्मद हमादुर रहमान, हेड ऑफ वॉलंटियर्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, लाहौर। प्रोग्राम जुगनू पेश किया जाता है आपको VIS डिपार्टमेंट के पार्टनर इदारों से रोशनास करवाने के लिए बरोज मंगल सुपहर 3 बजे। सामीन इकराम, दुनिया में बहुत से लोग हमें हमसे कुछ मुख्तलिफ नजर आते हैं, कुछ रंगों नस्ल के फर्क की वजह से और कुछ अपनी हैयत की वजह से, लेकिन सभी अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं। हमें इस चीज़ का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी तरह इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कुछ खास सलाहियतें अता की हैं, मगर वो चंद सलाहियतों से महरूम भी हैं जो शायद हम में से बहुत सों को अल्लाह ने अता की हैं। इसी हवाले से बहुत से इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो स्पेशली एबल्ड लोगों के हवाले से काम करते हैं, और ऐसे ही एक इदारे का तारुफ आज हम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है फलाह फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बड़ी प्यारी आपा हैं फ्रिया सैफ, जो कि इस इदारे की फाउंडर और CEO हैं। उनका मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलूँ, डिटेल तारुफ तो वो खुद करवाएंगी, उसके लिए मैं ज़्यादा टाइम उनका नहीं लूँगा। शी इज़ बेसिकली फाउंडर एंड CEO ऑफ ला फाउंडेशन, कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेजेस पैथोलॉजिस्ट एट ब्रिज हॉस्पिटल एंड फारूक हॉस्पिटल, कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एट PAF इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच ट्रेनिंग सेंटर लाहौर, एडवाइजर टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फैकल्टी एडवाइजर एट रेयरसन यूनिवर्सिटी टोरंटो ओंटारियो कैनेडा, मेंबर इवेंट मैनेजमेंट कमेटी पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड, और इसके अलावा वो रिसोर्स पर्सन के तौर पे बहुत से इदारों के साथ काम कर रही हैं जिनका नाम लेने पे तो बहुत टाइम जो है ना वो कंज्यूम हो जाएगा। सो बेहतर है कि हम फ्रिया आपा को वेलकम करते हैं। फ्रिया आपा, वेलकम टू द शो जी।
3: थैंक यू सो मच हमाद, थैंक यू सो मच।
2: एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने इदारे का तारुफ अगर डिटेल से खुद करवाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
3: हमाद, एक तो ये अपॉर्चुनिटी देने का बहुत शुक्रिया आपका, और VIS प्रोग्राम का ऑलवेज आई एम इंस्पायर्ड बाय द प्रोग्राम यू मेंशन दैट के VIS जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यानी हमारे इन बच्चों के कैरियर के अलावा आप ये कहें कि सोशल जो इनकी वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, इनका आगे बढ़ना है, इसके लिए जरूरी है कि, और मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोगों ने इसे मैंडेटरी किया हुआ है, सो दे हैव टू गो टू द NGOs और उन्हें पता चले कि बेसिकली लाइफ अल्लाह पाक ने हमें क्यों यहाँ भेजा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। इसलिए कि मैंने भी इसको जाना कि NGO सेक्टर में आने के बाद कि बेसिकली अल्लाह पाक ने हमें भेजा क्यों इस दुनिया में, कि आपने दूसरों के काम आने, आपकी जिंदगी तो शुरू होगी आफ्टर डेथ, मुझे ये लगता है कि उसके बाद आपने जो इसमें अमल किया और फिर आपको मिलेगा और वो हमेशा के लिए रहेगा। सो टू सर्व अदर्स वी आर हेयर, तो VIS जो है वो डेफिनेटली इस प्रोटोकॉल्स को पूरा कर रहा है। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू हमाद वंस अगेन, योर टीम, और फलाह फाउंडेशन के बारे में आपको जरूर बताती चली जाऊं कि इट्स माई पैशन, इट्स माई ड्रीम, और आप कहें कि ये बच्चे जो स्पेशल हैं, दे गिव मी लाइफ, दे गिव मी रीजन टू लिव। एक्चुअली आई वॉज वर्किंग एट हमजा फाउंडेशन अकेडमी फॉर डेफ एज अ सीनियर पैथोलॉजिस्ट ओवर देयर, तो आप ये कहें कि शायद अल्लाह पाक ने चूज कर लिया होता है, और फिर आपकी जिंदगी में कुछ हवाएं ऐसी चलती हैं और सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप को अल्लाह पाक उस तरफ ले जाते हैं कि आपके ड्यूटी लगा देते हैं। सो इसी तरह मेरी ड्यूटी लगी, और इन 2009 के अब आप इन बच्चों पे काम करें। तो अहमद, मेरी मोटिवेशन बिहाइंड फलाह फाउंडेशन वो ये थी कि कुछ आपको शायद पता भी हो कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी कुछ ज़्यादा है, कि मुझे छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि अगर मेरा बच्चा जो कि 4 साल का है और हेयरिंग इम्पेयर्ड है, माँ ने उससे एक लफ्ज़ होता है जो बच्चा हमें बोलता है, मामा या पापा या बाबा, وہ نہیں سنا کیونکہ اس کا بچہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے.
2: جی.
3: تو جب ہم سکھاتے ہیں اسپیچ ان کو تو ہم وہ ورڈ سکھاتے ہیں پہلے اللہ, کے بعد ہم سکھاتے ہیں ماما. اور بائی لیبیل ساؤنڈ ہے, بہت جلدی بول لیتا ہے. تو نا ایک دن جب میں نے بچے کو سکھایا اور وہ گھر گیا اور اس نے اپنی مدر کو کال کیا فرسٹ ٹائم ماما, اور اس کی مدر نے پہلی دفعہ سنا کہ اس نے کہا کیا بولا مجھے, تو دین اگین ہی کال ماما. تو نیکسٹ ڈے وہ میرے پاس آئیں اور بہت روتی ہوئی کہ یو نو کہ میں کتنا ترسی ہوں اس ورڈ کو. سو مجھے اس دن ریلائزیشن ہوئی کہ ہم تو ایسے بول دیتے ہیں لفظ, وی آر سو بلیسڈ پیپل کہ وی کین ہیئر اور ہم جیسے مرضی ایکسپریس کرتے ہیں, اور کئیوں کے لیے وہ ورڈ سننا کتنی بلیسنگ تھی. سو آئی ایم سو بلیسڈ ٹو ہیو دیز کڈس. سو ہوا یہ کہ اب دل چاہا کہ نا انکلوسیو پہ کام کیا جائے. انکلوسیو ایجوکیشن پر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں انٹرنیشنلی ایک سیمینار اٹینڈ کیا, اور وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ ٹرو ہیومینٹی جو ہے وہ انکلوژن ہے. سو بس آپ یہ کہیں کہ میں یہ کرتی تھی کہ جس بچے کا ایڈمیشن نہیں نہ ہوتا تھا اس کو ری ٹیسٹ کے لیے تیار کرتی تھی, اور ری ٹیسٹ کروایا اور اس کا ایڈمیشن ہوا, اور ویری نیکسٹ ڈے جب وہ پیرنٹس میرے پاس آتے تھے کہ اٹس جسٹ بیکاز آف یو کہ ہمارے بچے کا کوئی مستقبل ہوا, تو میں سوچتی تھی کہ یس آئی ہیو ڈن ٹوڈے سم تھنگ فار مائی سیلف, تو آج کچھ کیا ہے. مجھے لگتا ہے اللہ پاک کو شاید یہ چیز پسند آئی, اینڈ آئی اسٹارٹڈ فلا فاؤنڈیشن.
2: دیٹس گریٹ جی. بات ہو رہی ہے ہماری آپا فریہ صاحب سے, لیکن اس وقت وقت ہوا ہے ایک شارٹ میوزیکل بریک کا. حاضر ہوتے ہیں میوزیکل بریک کے بعد, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. हम बात कर रहे हैं आपा फ्रिया सैफ के साथ फिलहाल फाउंडेशन के हवाले से. तो आपा ये बताइए कि चले कॉन्सेप्ट तो आपने बड़ा प्यारा माशाल्लाह एक्सप्लेन किया, लेकिन वाई फला फाउंडेशन, यही नाम क्यों?
2: हमाद, रंग सभी प्यारे होते हैं ना, और अल्लाह पाक ने हमें दिया होता है कि अच्छा रंगों से खेलो. तो अब हुआ ये कि हमें रजिस्ट्रेशन करवानी थी विद सोशल वेलफेयर अपने फाउंडेशन की. तो मी, माय हस्बैंड सैफ, माय मदर, वन ऑफ माय फ्रेंड वर सिटिंग ओवर देयर, और हम सोच रहे थे अच्छा व्हाट शुड बी द नेम. इसलिए कि अब हमने वो जो उनकी असेसमेंट क्राइटेरिया एप्लीकेशन थी ना, उसमें पहला क्वेश्चन था अपनी फाउंडेशन का नाम लिखें. अब हमने तो कभी सोचा ही नहीं. अब इसको इंक्लूसिव फाउंडेशन कहें, क्या कहें, मैं इनका नहीं सोचते हैं नाम ना. अच्छा, बहुत नाम सोचे हमाद. इस तरह था कि हमें लग रहा था बच्चे का नाम नहीं इतना मुश्किल होता जितना फाउंडेशन का नाम मुश्किल हो गया है. हमने right. पर्चियां निकालते हैं कुछ करें इस तरह. फिर हमने ना कॉल्स की अपनी फ्रेंड्स को, अच्छा कोई नाम.
1: सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ. बच्चे का नाम रखने में ये भी नहीं सोचना पड़ता कि कहीं किसी और का पहले से ये नाम ना हो. फाउंडेशन में ये भी देखना पड़ता है कि पहले से किसी ने
2: चाचा ये कह रहे हैं, खाला ये कह रही है, तो हम पर्चियां डाल के छोटे बच्चे से उठवा लेते हैं. तो वो आप नाम जी
1: इजी होते हैं.
2: अब यहाँ पर ये था कि जो भी नाम आता था तो मैं कहती थी नहीं, ये मेरा विजन नहीं है, नहीं मेरा मिशन नहीं है. एक ने तो मुझे कहा कि अपने छोटे बेटे के नाम पे रख लो.
1: राइट.
2: मैंने कहा ना छोटे बेटे का इससे क्या ताल्लुक है. तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा मिशन नहीं है ना. तो बहुत नाम सोचे हमाद, और इतने यानी दिमाग की दही कह दे ना, वो मुहावरा फिट बैठता था उस वक्त. तो मगरिब की अजान हुई तो मैंने कहा अच्छा चलो सब नमाज पढ़ो, और ना उसके बाद दोबारा आते हैं और फिर बैठेंगे, फिर सोचते हैं, थोड़ा सा जरा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा. अच्छा, अब यहाँ पर ना हमाद सब लोग ने अजान सुनी और सब लोग वजू करने यानी गए. तो जब मैं वजू कर रही थी तो आई हर्ड द समन्स ऑफ अजान हैया लल फला. तो मेरे जहन में हैया लल फला नहीं आया, मेरे जहन में मेरी नानों की बात आई कि हमेशा नमाज को जो अजान दे रहा है वो अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं कह रहा, वो अल्लाह का पैगाम आपको सुना रहा है. तो अरबी को ना जहन में उर्दू में लाना कि वो अगर हैया लल फला कह रहा है तो मेरे जहन में आया कामयाबी की तरफ आओ. तो हमारे जैसे मैंने ये यानी उसके लफ्ज सुने ना हैया लल फला, तो मैंने कहा यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं और जो स्कूल नहीं जा सकते हैं तो ये कामयाबी की तरफ आए. तो इतनी एक्साइटमेंट से मैं निकली ना बाहर. और मैंने कहा ओ हो, आई फाउंड द नेम ऑफ द फाउंडेशन एंड इट शुड बी फला फाउंडेशन. सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी अजान हो तो हम लोग यूजली अदब से उसको सुनते हैं, लेकिन उसको समझें भी कि वो अल्लाह का हमारी तरफ क्या पैगाम दे रहा है. तो मेरा ख्याल है कि हम सारी उठ जाया करेंगे जब हमें ये समझ आएगी. तो मैं अपनी यानी नानों के बहुत करीब थी और बहुत कुछ सीखने को उस वक्त बुजुर्गों से मिलता था. तो बस वो क्लिक हुआ फला, और मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे भी ये सब कामयाबी की तरफ जाएं. तो आई टुक फ्रॉम देयर
1: इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, और बड़े अच्छे मानी भी हैं और माशाल्लाह काम भी आप लोग बड़े अच्छे कर रहे हैं. बात हो रही थी आप इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से, इसकी आप अहमियत क्या समझती हैं, कितना अहम है ये टॉपिक कि इंक्लूसिविसिटी जो है कितनी ज़रूरी है एक स्पेशली एबल्ड बच्चे के लिए नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए, इसकी क्या अहमियत है आपके ख्याल में?
2: वंडरफुल क्वेश्चन हमाद, और बहुत मेरे दिल के पास है ये क्वेश्चन. इसलिए कि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन को समझें कि इंक्लूसिव मींस कि सबको इंक्लूड करें, ठीक है, सिंपल सा की डेफिनेशन है. इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन मींस कि आपका जो डिफरेंटली एबल बच्चा है, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, विजुअल सेरिब्रल पाल्सी के साथ है, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म बच्चा है, या मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ है, या लर्निंग डिसेबिलिटी. अक्सर मैं कहती हूँ अच्छा लोग समझ कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या, तो मैं कहती हूँ अच्छा वो मूवी देखी है तारे जमीन पे, तो सब ने देखी होती है. सबके हाथ खड़े हो जाएंगे हाँ जी देखी है. तो उसमें डिसलेक्सिया था बच्चे को. इसी तरह हमारे और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, कुछ हिडन डिसेबिलिटीज होती हैं. आपका इतना मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, आप बहुत डिप्रेशन में गए होते हो और आप डिसीजन पावर आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है, उस वक्त भी आप डिसेबल हो जाते हो. सो यानी उसमें यह है कि अगर आपका मैथ्स वीक है, वैसे हमारा बताओ बचपन में मैथ्स कैसा था?
1: डिफिकल्ट क्वेश्चन.
2: सो यानी हो सकता है हमारा कि आपको जो है ना वो डिसकैलकुला हो.
1: मेबी.
2: ठीक है. यानी डिसलेक्सिया आपकी रीडिंग डिसेबिलिटी है. इस तरह इसी तरह अगर आपका मैथ्स वीक है और आपको समझ नहीं आती कि जी 5 को इस तरफ लिखें या उस तरफ लिखें, 9 को नीचे कर देते तो 6 है, ऊपर कर देते तो 9
1: right,
2: है.
1: सो
2: हो सकता है कि आपको वेन डायग्राम्स नहीं समझ आती, प्रोबेबिलिटी का नहीं पता चलता, तो यू मे हैव डिसकैलकुला. तो इसी तरह अगर राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपको नहीं पता चल रहा, तो हो सकता है कि यू हैव काइंड ऑफ डिसग्राफिया. सो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हैं. तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन आपको मौका देती है कि आप एबल बच्चों के साथ रहो. देखो आई बिलीव के नो पेरेंट्स वॉन्ट्स कि उसका बच्चा डिसेबल पैदा हो, तो वाई वी सेग्रीगेट देम बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी. लाइक मेरा बच्चा 4 साल का हुआ, आप कहाँ लेके जाते हैं उसको? स्कूल
1: लेके जाते हैं. ठीक
2: है, इसको प्ले ग्रुप में करवाते हैं और आपको वहां पे प्रिंसिपल कहें कि सॉरी जी इट्स नॉट द राइट स्कूल फॉर योर चाइल्ड बिकॉज यू हैव अ स्पेशल चाइल्ड. सो इट्स वेरी पेनफुल. उस वक्त पेरेंट को तो पता चल जाता है कि क्यों मुझे अलहदा किया गया, बिकॉज आई हैव अ स्पेशल चाइल्ड. बच्चे को कुछ नहीं पता उस वक्त कि मेरे साथ हुआ क्या है.
1: बिल्कुल.
2: वो तो जब बड़ा होता है तब उसको समझ आती है कि मेरे साथ हुआ क्या था. लेकिन जो आपने पेरेंट में डाली है ना बात कि इट्स नॉट द राइट स्कूल फॉर योर चाइल्ड, वो ट्रांसफर हुई है उस बच्चे में. हमने पेरेंट को भी अलहदा कर दिया, हमने बच्चे को भी अलहदा कर दिया. तो देखिए आपने जब अपने से अलहदा कर दिया उसको, तो वो कभी भी हमारे साथ शामिल नहीं होगा.
1: एग्जैक्टली.
2: ठीक है. और वो जितने प्रॉब्लम्स में रहेगा, कन्फ्यूजन में रहेगा लाइफ उसकी. तो आप देखें कि हमने अपने एक इंक्लूसिविटी की वजह से जो हम नहीं कर रहे थे उसको एक्सेप्टेंस की वजह से तबाहियां मचा दी लोगों की लाइफ में, फैमिलीज में. सो आई जस्ट विश कि हम इनको साथ लेके चलें, इनकी एक स्पेशल नीड है उसको देखें और हम इंक्लूसिव को प्रमोट करें.
1: राइट राइट जी. सिंपल वर्ड्स में अगर पुट करें तो इंक्लूसिविटी या इंक्लूसिव एजुकेशन मींस सबको साथ लेके चलना और सभी को एक ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाया जाए, परवान चढ़ाया जाए. वक्त हुआ है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का. हाजिर होते हैं शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. बातें हो रही हैं आप अफ्रिया सैफ के साथ. आप बात हो रही थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो उसी पे मैं चाहूंगा कि मजीद भी आप कुछ रोशनी डालें कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कुछ लोग समझते हैं कि जो बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा बाकी बच्चों से कोप अप करना, उनके साथ मैच करना, उनके साथ मिलकर चलना. तो इसमें कितनी हकीकत और कितनी मिथ है इस बात में?
2: अगर हम जनरली देखें तो हम ये कहेंगे कि बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन आपको ये पता हो कि दे आर ह्यूमंस एंड दे हैव टू बी विद ह्यूमंस. ठीक है, व्हाई वी सेग्रीगेट. अगर हम इसी कमरे को ले लें हमाद, अगर हम यहाँ पर 10 मेंटली चैलेंज बैठे हों और एक एबल बैठा हो जिसको मेंटली चैलेंज हो जाएगा, वो एक वे जो बैठा हो तो वो जो 10 मेंटली चैलेंज वो ग्रो कैसे करेंगे? जब तक हम उसमें एबल बच्चे नहीं डालेंगे, उनके साथ उनको नहीं बिठाएंगे, तो वो सीखेंगे क्या? तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको सिखाती है. यहाँ पर अगर आप फलाह में आओ तो हमाद यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी. कि एक डाउन सिंड्रोम बच्चे को पता है कि हमाद की व्हील चेयर रैम्प से मैंने ऊपर लानी, बल्कि रेस लगी होती है कि कौन जल्दी पहुंचेगा और जो है ना हमाद की व्हील चेयर मैंने ऊपर लेके जानी है. मेरे बच्चे ने अगर वॉशरूम जाना है और टीचर कहेंगी कि अच्छा हमाद को वॉशरूम कौन लेके जाएगा, तो आपको पता है कि मेंटली चैलेंज भी हाथ खड़ा करते हैं. तो दिस इज द ब्यूटी. मुझे कभी परेशानी नहीं हुई हमाद, और कभी किसी ने एक दूसरे को किसी की डिसेबिलिटी से कॉल नहीं किया कि वो कहे, दे कॉल बाय देयर नेम्स. उनकी जो आइडेंटिटी है, नाम है, और उसी से वो उसको कॉल करते हैं, एक दूसरे को कॉप अप करते हैं कि किसी ने हाथ पकड़ा के चलना है वॉशरूम, उसको ले जाते हैं और इंतजार करते हैं. इसी तरह एबल है, फौरन एबल उठता है कि हम इसकी हेल्प करते हैं. अब जिस तरह होता है ना क्लास में कि जब काम खत्म कर लिया, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जल्दी काम खत्म करके चेक करवा के बैठ गए, वो क्या करते हैं कि अब वो शोर नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं कि जो उनका दोस्त डाउन सिंड्रोम बैठा हुआ है या फिजिकल हैंडीकैप बैठा हुआ है या कोई मेंटली चैलेंज बैठा हुआ है, उसका इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बना हुआ है और वो उसके मुताबिक पढ़ रहा होता है. इंक्लूसिव एजुकेशन की मिथ ये है हमाद कि फिजिकल एज के मुताबिक बैठते, मेंटल एज के मुताबिक पढ़ते हैं. डेट्स ऑल. यानी आप ये कहो कि अगर एक बच्चे की हाइट 7th क्लास तक के बच्चे की हो गई है, डेवलपमेंट उसकी हाइट जो है फिजिकल एज, तो वो डाउन सिंड्रोम है, पढ़ वो रहा है प्ले ग्रुप का जो उसका एकेडमिक गोल्स है, बैठेगा वो फिर प्ले ग्रुप में नहीं, वो 7th क्लास में बैठेगा क्योंकि उसका जो पीयर ग्रुप है उसकी हाइट जो है वो उसके मुताबिक है. तो अब क्या होता है कि एबल बच्चा उस डाउन सिंड्रोम दोस्त को सिखा देता है, उसके बाद जब उसने अपना पढ़ लिया फिर वो डाउन सिंड्रोम दोस्त को अपना रिवाइज करवाता रहता है, रिपीट करवाता रहता है, कलरिंग करवा देता है, डॉट्स पे लिखना सिखा देता है. तो ये इट्स अ ब्यूटी कि वो एक दूसरे को कॉप अप करते हैं, चीजों को आसान बनाते हैं.
3: राइट.
2: इंक्लूसिव मुश्किल नहीं है, ये आसानियां पैदा करती है. तो आई एम हैप्पी डेट के इट्स बीइंग लाइक मोर देन 14 ईयर्स मैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम कर रही हूँ और फुल इंक्लूजन पे कर रही हूँ कि तमाम टाइम पीरियड के लिए बच्चे एबल और डिफरेंटली एबल इकट्ठे बैठते हैं. तो हम लोग तीन चीजों पे काम करें. नंबर वन उनकी एजुकेशन, नंबर टू एजुकेशन इट डजंट मीन के उसको मैंने कोई PhD करवानी है, मुझे उसको इंसान का पुत्र बनाना है. सो ही नोज के मुझे कैसे उठना बैठना कैसे है, मुझे सर्वाइवल कैसे करना है अपना, वो ये जान सके. सेकेंडली हम उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं. रिहैबिलिटेशन मीन ये होता है कि उनको जहाँ पे स्पीच थेरेपी चाहिए, जहाँ पे फिजियोथेरेपी चाहिए, जहाँ पे उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, व्हील चेयर्स चाहिए, हेयरिंग एड्स चाहिए, उनको कोई सर्जरी चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं
1: जी.
2: और थर्ड हम उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करते हैं.
1: राइट. वोकेशनल ट्रेनिंग पे मजीद बात करेंगे लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. टाइम हो चुका है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। बात हो रही है आप अफरिया सैफ से। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो एक बड़ा अच्छा आइडिया आपने शेयर किया कि जो बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं उनका आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर ज़रा रोशनी डाली कि किस तरह के कोर्सेज आप उनको ऑफर करते हैं और उसमें क्या बेनिफिट उनको होता है इन फ्यूचर।
2: थैंक यू मान। बेसिकली ना हम लोग जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी टोटली फ्री है, यानी वी आर नॉट टेकिंग अ सिंगल पैनी फ्रॉम द पेरेंट्स। मुझे लगता है बस मेरे हवाले कर दो बच्चा, कुछ ना कुछ बना ही दूंगी इसको। तो आई वॉन्ट टू थिंग्स फ्रॉम माई बच्चा, वन इज स्माइल एंड द अदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट स्किल। तो मेरा बच्चा स्माइल कर रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा ना, भूल कर आ गया सारा कुछ, इट्स ओके इफ ही इज स्टिल स्माइलिंग। तो मैं टीचर से कहती हूँ अच्छा स्माइल कर रहा है ना, शरारतें कर रहे हैं ना, इट्स ओके। और दूसरा है कि स्किल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि दे बिलोंग टू द लेस प्रिविलेज, उनको ये होता है कि कुछ ना कुछ कमाए, चाहे वो बर्गर पॉइंट पे कभी उसको खड़ा कर दें या मुझे होता है कि मैं उनको सिखाऊं कि हाउ टू कैच अ फिश, रादर देन मैं उनको देती रहूं
1: फीडिंग देम द फिश।
2: तो मेरी कोशिश होती है कि स्किल करूं, तो उनका मैं इंटरेस्ट देखती हूं। कंप्यूटर्स भी होते हैं बच्चों को हम करवाते हैं, लेकिन जिसमें कमाई है जिस तरह ड्रेस डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग है, पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड से हमने प्रोजेक्ट लिया था, 3 माह की ट्रेनिंग है उसमें, और उसमें ये होता है कि बच्चे को हम स्टिचिंग तक पहुंचा देते हैं कि वो केपेबल हो जाता है कि अगर हम उसको एक स्विंग मशीन देते हैं तो वो घर बैठकर भी अपना रोजी रोटी कमा सकता है। तो इट्स लाइक अभी मैंने 260 बच्चे जो हैं वो हमने स्केल किए और माशाल्लाह वो अर्निंग हैंड है। और इसी तरह जो मेरे बच्चे पायनियर्स में शुरू से जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, तो अब तो वो अपने यानी किसी बुटीक वाली के साथ लगे हुए हैं, कुछ लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इनकी स्पेशल नीड को देखें, जैसे अब मैंने देखा कि मैंने फिजिकल हैंडीकैप जो पोलियो की वजह से था बच्चा वकास, उसको मैंने स्किल तो कर दिया लेकिन उसकी मोबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है कि बाइकी वाला भी ना वो सोचता होता था हमारे के अब मैं इसको उठाऊं और

0: आप दो पहिए लगा देते हैं, तो हम वो कर देते हैं इसके लिए अरेंज। तो माशाल्लाह उन्होंने वो अरेंज किया। अब वकास खुद ही उठते बैठते हैं उस पर और अपनी मार्केटिंग खुद करते हैं, अपनी बुटीक चलाते हैं। तो इट मीन्स कि हम इनको मंजिल की तरफ रवाना कर सकते हैं, बाकी ये अपनी एफर्ट्स कर लेते हैं। तो जरूरी है कि इनको हम स्किल करें। इसके अलावा हम लोग खाड़ी का वर्क सिखाते हैं, बहुत खूबसूरत काम है और बच्चे बहुत रंगों से खेलते हैं इससे, खाड़ी से डिफरेंट बैग्स बनाते हैं, शूज बनाते हैं बच्चे मेरे। उसके अलावा वो डिफरेंट जो है उसको डिजाइन करके कुशंस बनाते हैं बच्चे। फिर हमने इनको सिखाया कैंडल मेकिंग जो कि फ्रेग्रेंस वाली थी। तो इसी तरह हम इनको जो है ना कोशिश ये करते हैं कि कुछ ना कुछ स्किल इनके पास हो। हमारी जो आयाज है ना, हमारे वो भी काम सीख रही हैं, इसलिए कि डेट आई नो कि कब तक झाड़ू पोछा, कब तक किस उम्र तक करेंगी। तो इनको भी स्किल, एक और हुनर इनको आना चाहिए। तो हम उनको भी स्किल करते हैं कि मदर्स को भी स्ट्रांग करते हैं कि आई नो कि मेरी मदर्स कब तक काम करेंगी घरों में। तो इनके पास जब स्किल आ जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ खुद करने के काबिल होंगी घर में, और फिर इन्हें पता होगा कि हमने इसको सेल आउट कैसे करना है। उसको आगे हम प्रमोट करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि हम उनका काम जो है वो आगे तक लेके जाएं। तो हम डिफरेंट एग्जीबिशंस में उनका काम रखते हैं और इस तरह जो है ये सर्विसेज हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं।
1: राइट मैंने देखा है कई मरतबा, बल्कि हम दोनों ही पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड के इवेंट मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट रहे हैं, तो उसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं आपके बच्चे, तो उनको ट्रेन कौन करता है उन परफॉर्मेंसेज के लिए?
0: अच्छा हमाद, हम ना इस तरह होता है ना जिस तरह तैयारी करते हैं ना शादी पे ये वो, तो हमारा जो इवेंट ये वाला होता है ना, हम इसी तरह होते हैं। हम कहते हैं कि हम, हमारा डे है जैसे कमिंग 3rd December इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट होगा, तो इवेंट मैनेजमेंट कमेटी जो है वो यही करती है कि 3rd December को फोकस करती है इन लोगों की, पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल जो है कि वो करें। तो मुझे होता है कि खेलें उसमें, ये खुश हों और जो कहते हैं ना हम दिल से खेलें, ठीक है, दिल से उसको समझें, इंजॉय करें उस डे को कि ये आपका दिन है। तो मुझे लगता है कि मस्ती डालें इसमें, रंग डालें इसमें, इसलिए कि मेरी जिंदगी में रंग नहमाद इन्हीं की वजह से है। जब से मेरे बच्चे ये मेरी जिंदगी में आए ना, तो मुझे यानी अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरती दी मेरी लाइफ में, मुश्किलें भी आई, आसानियां भी दी, तो मुझे लगता है इन्हीं की बदौलत है। तो जब ये प्रोग्राम होता है ना, तो हम कहते हैं कौन सा थ्रिलिंग सॉन्ग हो वो हम इन बच्चों को परफॉर्म करवाएं। वो सॉन्ग लगने की देर होती है मान, दे परफॉर्म सो वेल और वो इतना खूबसूरत एक परफॉर्मेंस बन जाती है। फिर मेरी जो टीचर्स हैं, आई कॉल देम चीतीज, वो बहुत अच्छा एक आप ये कहें कि उनमें एक डिवोशन है, मोटिवेशन है, कुछ करने की चाहत है उनमें, तो वो फिर इन बच्चों के साथ काम करती हैं। तो हम सब मिलके ही ये कर रहे होते हैं, और जिस दिन हमने जाना होता है वो इवेंट पे, तो जिस तरह वो घर में बारात जब चली जाती है, तो आप देखते हैं ना कि चीजें इस तरह बिखरी हुई हैं, तो हमारा फाउंडेशन इसी तरह का हाल हुआ।
1: राइट, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू जी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारे लिसनर्स को भी। मैं चाहूंगा आपा कि हमारी जो यूथ है उनके लिए आप कोई पैगाम आप देना चाहें तो प्लीज।
0: श्योर हमाद, मेरी यूथ जो है ना, मुझे उससे बहुत सी उम्मीदें हैं, और दीज आर द लीडर्स और आर फ्यूचर ना, और मुझे लगता है कि वो इतने परेशान हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, अब हमारे साथ होना क्या है, अब हमने बनना क्या है। तो यूथ, वन थिंग रिमेम्बर कि राज़िक अल्लाह पाक की ज़ात है, और जितना उसने आपके लिए लिखा है जहाँ से वो आपको मिलेगा, जो आपने करना है वो आपने अपने इमाल से करना है, उसकी तरफ भी तवज्जो दो, इसलिए कि वो आपके ऊपर छोड़ा है कि नेकी आपको दस्तक देगी, चाहे वो नेकी आपको इसलिए दस्तक दे दी कि आप इन फाउंडेशंस में जाओ, उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, डू इट। उस बच्चे के लिए कुछ भी बेहतरी कर सकते हो ना, चाहे वो एक स्माइल ही क्यों है, वो जरूर हासिल करो। तो यूथ परेशान ना हो, इसलिए कि तवक्कल रखो। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो अल्लाह पाक ने सब्र और शुक्र रखा है, इतनी खूबसूरत चीजें अगर कर लो ना, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो अपनी भी जिंदगी को आसान करो, اور دوسروں کی مشکلوں کو بھی آسانی میں کوشش کرو کہ آپ کوئی ایفرٹ کرو جس سے آسانیاں آئیں لوگوں میں. تو آسانیاں بانٹو، خوشیاں بانٹو، اور

0: keep smiling.
1: That's a great message जी. आसानियाँ पैदा करें अपने लिए और दूसरों के लिए. जब दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अपनी लाइफ भी आसान डेफिनेटली हो जाएगी. और दवाएं इकट्ठी करें लोगों की और लोगों की स्माइल्स की दौलत इकट्ठी करें. इसी पैगाम के साथ इजाजत चाहते हैं आज के शो से. थैंक यू सो मच आपा, आपको तशरीफ लाने का. बड़ी अच्छी गुफ्तगु रही और उम्मीद है कि बहुत कुछ हमारी यूथ ने सीखा होगा. आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहेंगे इस पैगाम के साथ कि दूसरों की कमी को नहीं बल्कि उनकी सलाहियतों को देखें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार सकें जैसे कि आप गुजार रहे हैं. बहुत शुक्रिया. हाजिर होंगे अगले मंगल के रोज 3 बजे. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: उस पर कायम हो जाए,
1: चट्टान की तरह कायम डट जाए। मिस सबा, नहीं मैं आपसे पूछूंगा कि आइंदा आने वाले सेमेस्टर में आपके डिपार्टमेंट में क्या ऐसे प्लान्स हैं जो कि ना सिर्फ फैकल्टी को उनके जो है नशोनुमा को बढ़ाएं, बल्कि जो मुस्तकबिल में जहां आपके बच्चों ने जाना है, एम्प्लॉयज के साथ, इंडस्ट्री के साथ कैसे आप डेवटेल करेंगे, कौन से सेमिनार्स हैं, कौन से कॉन्फ्रेंसेस हैं, कौन से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो आपके पास है? यही सवाल बाद में मैं शायद से देखिए सबसे भी करूँगा। मिस सबा नईम
2: जी सर, हमारे यहाँ पे यूसीबी का एक ये एनवायरनमेंट है कि कोई ना कोई एक्टिविटी जो है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमेशा मौजूद रहती है। और अगर पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो वी कंडक्ट डिफरेंट वर्कशॉप्स, और इसके अलावा हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे पोस्टर कॉम्पिटिशन है। एंड रिसेंटली आई ऑल्सो लाइक टू ऐड कि हमारा हर एनुअली एक साइंस एंड इंजीनियरिंग फेस्टिवल भी होता है, जिसमें हम साइंसेस को प्रमोट करते हैं। एंड बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, तो हम मैथ्स के डिपार्टमेंट मैथ्स की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सो उसमें हम डिफरेंट इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, विच वी इंस्टिल द इंटरेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टू द यंग स्टूडेंट्स, कि मैथ्स जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इट्स नोन एज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, और अभी तक उसकी रेलिवेंस ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे वो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स अब आईटी के आ रहे हैं, लेकिन मैथ्स वालों की जो ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि वी हैव बीन वी आर द लाइक बिगेस्ट फैकल्टी अक्रॉस यूसीपी, और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को भी कैटर कर रहे हैं। सो इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, हमेशा पूरे साल में कुछ ना कुछ ऐसे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। समर्स में हमारी वर्कशॉप टीचिंग की भी होती हैं, एंड देन रिसर्च के हवाले से भी होती हैं। सो यस,
1: शाह सिद्दीकी सब मुख्तसरन तकरीबन एक मिनट आपके पास है, आप बताइए कि आपके पास क्या प्लान्स हैं आइंदा आने वाले सेमेस्टर में इसातिज़ा के लिए और स्टूडेंट्स को मज़ीद एक्सपोज करने के लिए बाहर की दुनिया से।
0: जी, एक तो मैंने पहले ही स्टूडेंट्स के हवाले से बता दिया कि हमारा प्लान है समर में हम डेटा विजुअलाइजेशन ऑफर करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आउटसाइड यूसीपी, मैंने ये आइडिया दिया था प्रोफेसर साहब को, तो वो कह रहे हैं कम अप विद योर फुल प्लान। तो हम ये चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स एक बहुत टफ सब्जेक्ट समझा जाता है, और हमारे एक पुराने डीन थे, वो ये कहते थे कि रिग्रेस मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं, इसको लाइट बनाएं। तो असल में यही हमारी कमी है कि हम इसको सही तरह से बता नहीं पा रहे होते। हम उसको लाइट मोड में अगर बताएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चा। और यहाँ फिर मैथमेटिक्स की जहाँ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, बार बार हम कहते हैं जी कंप्यूटर साइंस ने ये तरक्की कर ली। मैं कहता हूँ कि उसके पीछे सारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स पुश करता है टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी पुश करती है मैथमेटिक्स को। आज मैंने जियोजेब्रा सीखा हुआ है, तो आई कैन डेवलप न्यू मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन जियोजेब्रा, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी जो मैं एक छोटी सी मिसाल के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, वो ये है, जब सिटी स्कैन आप सुनते हैं, ये बहुत पहले 89 में ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियन को दिया गया था कि अगर किसी पेशेंट के में कोई ट्यूमर है, हमने उसका वॉल्यूम निकालना है, हमारे पास सिर्फ उसके क्रॉस सेक्शंस पे डेटा पता है। तो वो मैथमेटिक्स तो डेवलप कर लिया गया, टेक्नोलॉजी पीछे रह गई और उसको दिखाया नहीं जा सका था। तो वही सीटी स्कैन आज वो सॉफ्टवेयर की शक्ल में, और जाहिर है कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई, तो इसकी जो स्टार्ट था, उसका जो वॉल्यूम निकालने का तरीका था, उसका पेपर आज भी डंडी यूनिवर्सिटी का मौजूद है, वो मैथमेटिशियन थे। थैंक यू वेरी मच
1: डॉक्टर सिद्दीकी साहब। एक मेरा ज़ाती सवाल तफन्नुन तबा के लिए, वो ये है कि फिज़िक्स वाले न्यूटन को अपना कहते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी न्यूटन को अपना कहते हैं। आप आज इस कज़िये का फैसला कर दीजिए कि बीइंग अ फिजिसिस्ट मैं न्यूटन को अपना कहूँ, या मैथमेटिशियन बीइंग अ मैथमेटिशियन आप न्यूटन को अपने डोमेन में कंसिडर करते हैं।
0: ये मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक ही बाप की औलाद हैं, और वो बाप है साइंस।
2: आप भी एक्चुअली हमारे हैं।
0: तो ये चूंकि एरिया इतना बड़ा हो गया, आपको बहुत सारे मैथमेटिशियन फिलोसोफर मिलेंगे।
1: बिल्कुल ठीक,
0: वो फिलोसोफर थे और वो मैथमेटिशियन भी थे।
1: ऐसे, ऐसे, ऐसे,
0: तो ये एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
1: ऐसे जी, ऐसे सारी ये एक दूसरे के सपोर्टिव साइंसेज हैं, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। सो सामी, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। लेकिन

0: आपको पसंद आएगा। हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले हफ्ते इसी वक्त इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान
1: जिंदाबाद।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6 UCP की दुनिया।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

इस सुरौर तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अम्मारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6 UCP की दुनिया।
5: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

www.musicbeat.edu.uk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। UCP की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6